0: ओम्स बोलो गणपति भगवान की जय। विना मूव इन टू पूजा। वरुण देव, वरुण देव रिप्रेजेंट्स वाटर, ही इज द गिवर ऑफ लॉन्ग लाइफ, प्रोजेनी एटसेट्रा। फॉर हिम टू ब्लेस अस ऑल विद लॉन्गजीविटी, and also to wash us free of all sins, all power, to bring to us that purity, that qualification to allow us to enter the kingdom of the Lord. Put your hands together as we invoke the presence, and also to offer our love, our devotion, our sincerity at the feet of Varun Dev. Om Varnya Shoktam Bhanamasi Varnasastamba Sajanistu Varnasarita Sadanmasi Varnasarita Sadanyasi Varnasarita Sadan Sri Varun Devai Sthapitam Om Devadanam Asambhadi Matyamani Mahodadhav उत्पनोति तदा कुम्भविघ्नतो विष्णुना स्वयं स्वक्तिसवतीर्थानि देवायि त्वयि शथा त्वयि शन्ति त्वयि प्राणा प्रतिशथा शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुतं च प्रजापति आदितवासुदेश पैतृका सानिधिगुरुमे देव उत्पन्नो भव सर्वत्र श्रीवरुण देवाय नमो स्तुति। We're going to have a nice devotional, nice bhajan at the feet of Varun Dev. Om Vaso Pavitramasi Shatadharam. Take this. Vaso Pavitramasi Sahasradharam Devastava Savinapuratu Vaso Pavitrin Shatadharin Supokam Dukshaya
1: Tu Jahasi Ayin.
0: One minute.

कृष्णेन रजस महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राजाय इंद्रियाय स्नेन्द्रा इमं महामोक्षे पुत्र मोक्षे पुत्रमस्य विशेषमि राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणां राजा श्री चंद्राय नमः। ओम अग्निर्मूढ़ा देवा ककुत्पति पृथिभ्या आयम आपा गुंग रेता गुंग सिजिनुति। ओम श्री भावमाये नमः। ओम उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहत्वामिष्टा पूर्ते संसजिते मयम च अस्मिन् सरस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीधता। ओम श्री बुद्धाय नमः। बृहस्पते नमः अंगिरस गोत्रस्य। ओम श्री शुक्राय नमः अत्रिरस गोत्रस्य। शनो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतिये शनो रवि श्रवन्तुना। ओम श्री शन शनिश्चराय नमः। ओम रंग राहुवे नमः। पैंतीस गोत्रस्य किंकाकेभ्यो नमो नमः। श्रीनाम ग्रह देवाय स्थापितम्। ओम गंगेशाय मुनाश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। वेद सूक्त समायुक्त युग सामा समन्वित सर्वर्णा प्रदाय वासासि प्रतिगृहतां श्रीखंदनं चननं दिव्यं गंधाद्यो सुमनोहरं लेपनं सुराश्रेष्ठि चननं प्रतिगृहतां सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियावर्धनं सुकरं मोक्षरं शैव सिन्दूरं प्रतिगृहतां यज्ञोपवीतं परमं पावित्रम् प्रजापत्य सजं पुरस्तात् आयुष्मगं पतिमुं शुभ्रं यज्ञो प्रवीतं बालमस्तु तेजः। ओम श्री शर्करा कनक ध्यान निधि क्षीरा रत्न रूपं चा मांजलिं भावमोक्षपदां तुभ्यं समर्पयामि। हरि प्रिया या फला निरजा फली आ पुष्पाया पुष्पनि बृहस्पति प्रभुता स्थानि मुंशन त्वं वंहसी। ओम एला लवंग कर्पूर आदि सहितं तांबूलं समर्पयामि श्री सुरनावग्रादि देवाय। नमोस्तुते हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमविजं भावसौ अनन्य पुण्य फलं त शांति प्रयश्च मे। कुमकुम कामना दिव्यं कामना शंभुवं कुमकुमी नाचिता देवा विहारं परमेश्वरं मालकादि सुगंधिनी मल्यचारिणवे प्रभु मालतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतीगतां वनस्पते रसोत्पन्न सुगंधाद्यो सो मनोहर आग सर्वरेवानं धूपोयं प्रतीगृहतां से स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा। बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा। शन शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम रंग राहुवे नमः स्वाहा। किंकाकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री नवग्रह देवाय भ्यो नमः स्वाहा। आचमन्यम सुराचमन्यम पूर्ण आचमन्यम दीपम यानि कानि शपापानि जन्मंतरसितानि च कानि तानि विनाशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे श्रीदीपज्योति नमोस्तुते। टेक सम फ्लावर्स इन प्रार्थना एवरीबडी। ओम ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य।

शशिधरासुतो बुद्धिनन्दनो राहुश्चकेतपवृत्तिर्नवग्रह कुर्वन्तु वा पूर्वमनोरथं सदा यं सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतु नमस्कृत्यं यज्ञरम्भे विशेषदा यज्ञरम्भे विशेषदा यज्ञरम्भे विशेषदा हरि ओं शान्ति शान्ति शान्ति हरि ओं श्री नवग्रह देवाय नमोस्तु ते। उपस्थित सज्जनों, फिर से आपको कोटि कोटि स्वागतम। फ्रॉम द राइट स्पॉट आई वेलकम ऑल ऑफ यू, इंक्लूडिंग ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम NCN, एंड दैट वी आर हियर टू कंटिन्यू आवर पूजा एट द फीट, टुनाइट एट द फीट ऑफ आवर यूनिवर्सल पेरेंट्स। वी आर नाउ गोइंग टू गो शॉर्टली and puja to Bhagwan Shiva, and then to Shakti Devi. So Bhagwan Shiva, the consort of Uma Devi, the most kind-hearted among the devatas, and we have several instances, we have loads and loads of examples of his caring nature, that he once, out of the Samundra Matan, he took that bhik and he ingested just to save not only the devatas, but to save us also. So we're going to have a nice bhajan at the feet of Bhagwan Shiva, and then invocation, puja.

0: नमामि
1: सासुमुखं शिवरूपं नमोस्तुते त्याग्यामि धार्यं अर्गोयं नमोस्तुते ओम भेद सुक्त समायुक्त युक्सावा समन्वित सर्वर्णा प्रदा देवादि प्रतिग्रताम थ्री टाइम्स अक्रॉस ओम श्री कननं चननं दिव्यं गंधाद्यो सो मनोहरम मिलेपनम सुरा श्रेष्ठी चननं प्रतिग्रताम श्री अक्षतस्य सुरक्ष श्रीश कुमकुमुक्ताश शोभित मायानि भक्त्य वीरित गृहाणं परमेश्वरं यज्ञोपवीतम् परमं पावित्रं प्रजापत्य सजं पुरस्तात् आयुष्मान् पतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बालमास्तु तेजः on the right side. Om mal the other way, the other side. Malakadi sugandhini malityadine ve prabhu martani pujadatam pushpani prati grihitam pushpa bahu pushpa sapujitaya tasmai makaraya namah shivaya. ओ मंदार पुष्प बहु पुष्प सपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय. ओम त्रिनेत्रं भैरवाकारं पूजिते चासुरासुरे उत्पत्ति स्थिति कर्तारं शंभुम् दर्शनं बेलपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनं आघोर पातक संहारं बेलपत्रं शिवं अर्पणं नैवेद्यं गृहीतां देवा भक्तिमेचलं कुरु ईचिदमेव रन्धी परात्राय परगतिं ऋतुफलं समर्पयामि. ओं नमः शिवाय. ओं एला लवंग कर्पूर आदि सहितं तांबूलं समर्पयामि. ओं नमः शिवाय. द्रव्यं हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं निभावसौ अनन्य पुण्यफलं च शांति प्रयश्च मे कुमकुम कामना दिव्यं कामना शंभुवं कुमकुमे चाचिता देवा गृहाणं परमेश्वरं यानि कानि

मुखमासे अश्विन मासे तृतीयो नाम तिथि यजमानाम कशत गोत्र मुखिनाम सदा शिव शंभु ध्वजा करने एवं गुण विशेष विशिष्टायम शुभ पुण्य सकल श्रुति स्मृति पुराण पर प्राप्ति काम सुबुत बांधव नौ ग्रह नू ग्रह सरानी व्रति नायुद दीर्घायु प्रेम भगवान की जय। मंगलं भगवान शंभु मंगलं वित्त भक्त च मंगल पार्वती नाथ मंगलं भक्त वत्सल प्रेम चोलो सदा श्री भगवान की जय। take this from me God.

0: पाद्यम ओम पाद्योः पाद्यम समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः अर्घ्यम ओम हस्तयोर्यम समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः आचमन्यम
1: ओम मुखे आचर्यम समर्पयामि
0: ओम दुम दुर्गायै नमः स्नान
1: ओम स्नानार्थं जलं समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः
0: पंचामृत
1: ओम पंचामृतेन पचायोर्येन समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः
0: वस्त्र
1: ओम वस्त्रं समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः
0: गंध
1: ओम गंधं समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः
0: कुसुम सिंदूर ओम सेंदुरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियावर्धनं सुखदं मोक्षदं शैव सेंदुरं प्रतिगृह्यताम् ओम दीपं ओम यानि कानिश पापानि जस्मन्तर्पि

0: पुष्पं समर्पयामि ॐ
1: दुर्गाय
0: नमः। अगरबत्ती एंड सो ऑन, ओम धूपम अर्पयामि
1: ॐ दुर्गाय नमः।
0: We can get some prasad. Anybody else with prasad? Mother Durga? Nimbush? What do you mean? What is that? Put flowers in Sarava. Flowers. Ready? Pick. Hari Om Tat Tat Tat Tat Tat Tat Vishnu Hare Vishnu Hare Vishnu Mahamangal Pariman Sotame Maase Amukha Maase Ashwin Maase Shukla Pakshe Tritiyo Naam Tithi Somvasare Ratri Se Yajmanamasya Amukhi Naam Aaj Shakti Mata Dhvaja Karne Evan Guna Vishesh Vishishtayam Shubh Punya Sakala Suti Smriti Puranpa Prapti Kaam Shubhat Bandhavasya नाव ग्रह नु ग्रह द्वार ग्रह कृत राज कृत सर्दी तिरानी प्रति नाय रुदती ढायु पावती विदान से मेरे चंद नाव ग्रह में किने शे किरण से आज शक्ति माता ध्वजा संकल्पम हम करी शे नाय वीर्यम समर्पयामि ओम दुम दुर्गायै नमः। नाय वीर्यम ग्रेतां देवा भक्ति मिहि चलम कुरु शक्ति माता की जय। टेक दिस वन, टेक वन, योर माउथ, टर्न रॉन्ग देयर, टेक अच्छा वी गोना एट दिस टाइम ऑफर द अदर शेयर्स ऑफ प्रसाद And we're going to do the Durga Chalisa. Namo, namo. Get your Durga Chalisa ready.